0: El mundo llama y la gente acude. China, turismo masificado a pesar de crisis económica. Sudáfrica, ¿cuántos safaris soporta el Parque Nacional Kruger? Uzbekistán, ¿el patrimonio cultural de la humanidad se olvida de sus habitantes?
1: Global es ahora.
2: असांजे वड़ील बि ईअं चाढ़ींदा जॾहिं रीते असीं चाढ़ींदा न हलूं था न इन में ई परम पार्थी माल जो हलियो अचे
0: बाहो उन सीलो अबियर्तो उन डॉक्यूमेंटल के रिट्राटा ला डेसापारिसियोन डे उना कुल्टुरा लोस उल्टिमोस नोमादास डे ला इंडिया
1: इन 30 मिनुटोस

0: en pariente.
1: खाना है खाने
0: मर
1: दपर हाँ तो तो आ जाए चप्पल जली में खाने दी तो कोई मोरी लग नहीं अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ जो करो है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी भी उद्योग रोगा जो जमीनों जिना रही है माल बेचारा भेजे कि ना।

0: Ada.
1: ऐ चांदो पुई करो आए मीटिंग निकी आग वा मालदारी गिरला आज ना तो आओ मोड़ पोजन से।

0: Bê tốt nào.
1: Hả, hít rồi.
0: Esa yo saman poca y mate y luz.
2: होटल जन तो जाए तो वो एकड़ी बंद है ए डाया पर में एकड़ी होटल बंद है तो भाई
3: ठीक है।

0: पिन पिन धणी वीचारा महिनत करी था हिन में धणी वटि असां वर ऐं मंझंदा न हिन वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहे हिन माल जी छा त माल जी ॾिसो त ई पूरी सिधी
1: हनी लाखोरी काथे रही वई लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसा पई खणी हिन घेटनि वॾा मनू में वे कसल त कड़ो हज़ार वातार में निकिरो त हाणे
2: अड़ी तपावा तू कड़ो कड़ो मत ऑइल जो दवा जो अची वही

आई पिंड उठन जाए का कक थो आई के घोर आते ने मने अठो अधी करे वराय दे गा पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वराय छडन दा तटन को कोटा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करना पण वाला

कि असीं जॾहिं पिणु वञूं था न होॾां असांखे मालदारी चए था मिठा, कि असीं जॾहिं पिणु वञूं था होॾां असांखे मालदारी चए था मिठा। या असीं कच्छ मुल्क जा मौजीला मालदारी आहियूं मिठा, या असीं कच्छ मुल्क जा मौजीला मालदारी आहियूं मिठा।

0: वालेकुम सलाम। ठीक है। मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ नी बने टाइम जुड़े तो ना बने अलाई
1: ना।
0: हाँ टाइम जुड़े ना तो जल जो कम मत हो जी समझ कर पुता की रे पूरा जो जानी तो ही तो पैर आ चो ने सुनो रही यार ना।
1: हाँ क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है भान जी दुआ है।
1: दो आला ने मैटर नहीं किया।
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: जरूर वाली भी आई कर दे।
0: अगर शायरी कैडी बनानी तो वफा जी को बेवफाई जी को शाड़ी जी बनानी
1: बेवफाई शायरी।
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: बस तो खेप गायल करे भाई।
1: हो
0: हाँ
1: क्या तो धंधा करो करो जरूर।
0: धंधा उठा कर डाला ही तो रहती मेरा कहीं आज जर तो सजे समझे नौ वर्ष बीत गए आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जर उठा कर डाला ही रहती मांडा मांडा को लोक नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी गाड़ी में लगी हुई है तो गाड़ी दादी गाड़ी गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट करना उठा गाड़ी बरोबर ने तेरे ती में लाए पे ये गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जा।
1: ये बात तो किया है।
0: इकना पड़े साधो ने सीधो ये धंधो बरोबर ना पण कोन टोला थे तो मा तारे दे पे हो जे टुकरो बेड़ो तो जे
1: रेती भरो तो ना जड़ी ने कोई पहला तो करूंगा ना
0: हाँ नहीं तो नहीं मुझे भरे कर गोठम खाली करने का
1: गोठम खाली करनी थोड़े पैसे तो उठाओ देन
0: कितने 100 रुपया कितने 150 कितने कड़ो सौ भी अट्री हो ना। कायम ही 100 रुपया फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 कड़ो सौ ट्री हो 4 हो कितने कड़ो 5 वजन
1: नंबर एक नथा हुआ है
0: नंबर एक नहीं ठाव को फिरना करना लगने का। मैं
1: YouTube पे तो कुल शायरी बनाई है घटा घटा कुल जो हलाई हुई है YouTube पे। शायरी तो जिन कुल के माँ पसंद क्यों आने लाइक किया बोला
0: ठीक यार ये तो जा बार
1: ये मैं आप बार कौन हो जाएंगे तो शायरी लेके तो तुम रंगा
0: ओ गड़ो है बस। आए वो जिंगा जो हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलोअप करो ने चाहे सजो की करो ना बरोबर तो हो जो फोटो डाला है टाइम जुड़े तो ना बना डाला है तुम।